0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो चौधवी का फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कैथोलिक कलीसिया के वैश्विक धर्म गुरु संत पापा लियो चौधवी ने अपनी पांचवी विश्व प्रेरितिक यात्रा शुरू की। संत पापा लियो चौधवी ने 25 सितंबर की सुबह रोम के स्थानीय समय अनुसार 7:58 में ईटा हवाई जहाज A321 से उड़ान भरते हुए पेरिस के ओली हवाई पतन पर स्थानीय समय 9:56 में लैंड किया। संत पापा लियो चौधवी के पूर्व संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों स्वरूप संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा 7 की। वहीं संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने 2008 में फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा पहली मर्तबा की, जबकि संत पापा फ्रांसिस ने सन 2014, 2023 और 2024 में फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा की। संत पापा लियो चौधवी की 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा वार्ता स्मृति और उम्मीद की प्रेरितिक यात्रा होगी। अपनी 4 इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो शांति, संस्कृति और एकता जैसे विषयों पर बातें करते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों, नागर समाज के अधिकारियों के अलावे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वे युवाओं, स्थानीय कलीसिया और सिनोडल असेंबली के सदस्यों के साथ साथ कलीसिया में दीक्षा प्राप्त से भी भेंट करेंगे। इस यात्रा का एक मजबूत सामाजिक आयाम बखिता निवास की भेंट भी होगी, जो सामाजिक कार्य का एक संस्थान है। इसके साथ ही संत पापा लूर्द की भेंट करते हुए नोटरडेम की देखरेख में संलग्न लोगों से मुलाकात करेंगे। मरियम के इस तीर्थ स्थल में संत पापा लियो प्रार्थना में कुछ पल अपना समय व्यतीत करते हुए समर्पित जीवन के लोगों के समुदाय और अति संवेदनशील लोगों, विशेषकर कुछ एक उन लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे जिन्हें कलीसिया में दुराचार का शिकार होना पड़ा है। संत पापा लियो चौदहवीं की प्रेरितिक यात्रा का अंतिम पड़ाव मेट्स होगा, जो 3 सीमाओं को मिलाने वाला एक शहर है, जिसके ऐतिहासिक बाहरी हिस्से आज भी दूसरे विश्व युद्ध के गवाह देते हैं। संत पापा लियो अलग अलग धर्मों के लोगों से भेंट करते हुए शांति और एकता हेतु यूरोप की जड़ें एक कार्यक्रम में सहभागी होंगे, जिनमें वे लोगों के बीच शांति और एकता की अपील करेंगे और इसके साथ ही अपनी प्रेरितिक यात्रा का समापन यूखारिस्तीय बलिदान से करेंगे। वैटिकन रेडियो संपादक विभाग के अधिकारी अंद्रिया तोर्नेल्ली ने संत पापा लियो चौदहवें की इस प्रेरितिक यात्रा के संबंध में अपने बुधवारीय संपादकीय में लिखा कि यह एक खास प्रेरितिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समुदायों में उनके विश्वास को मजबूत करना है और साथ ही शांति और एकता का संदेश देना है। ज्योति के शहर में संत पापा लियो की यह प्रेरितिक यात्रा किसी को दोष देने हेतु नहीं और ना ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर वाद विवाद करने का है, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से मिलन का है। फ्रांस की उनकी यह प्रेरितिक यात्रा उन लोगों को हिम्मत देने आना है जो अमानवता के आगे हार नहीं मानते और नहीं झुकते हैं। वे सुसमाचार के वचनों को लेकर जाते हैं, लेकिन सुसमाचार के उन वचनों को नहीं जो हवा में लटकती हो या जिसे सिर्फ विचारों या संदेशों तक सीमित रखा जाता हो। इसके बदले वे उन वचनों को लेकर जाते हैं, अंद्रिया तोर्नेल्ली ने लिखा, जो शरीर के रूप में मानव इतिहास में प्रवेश किया, हमारे समय के घावों से अपने को लड़खड़ाता पाया और हमारे बीच उस सत्य की ज्योति को प्रसारित किया जो झूठेपन के धुंध को हमसे दूर करती है। यह हमारे लिए एक वह वचन है जो दूसरों के दुखों से, युद्ध की गोलाबारी से घायल होने का निमंत्रण देती है, जो राजनैतिक सक्रियता और निष्ठा में रोकी जा सकती है। अंद्रिया ने लिखा, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम उन लोगों के चेहरे से मुंह ना मोड़ें जो भविष्य की तलाश में भूमध्य सागरीय प्रांत पार करते हुए पुरानी महाद्वीप में जीवन की खोज हेतु आते हैं। फ्रांस की इस जमीन से, जिसे अपनी पुरानी जड़ों, अपने इतिहास और दुनिया में अपनी भूमिका पर बहुत गर्व है, संत पापा लियो 14वें पूरे यूरोप से बात करेंगे। एक ऐसा यूरोप जो अपनी पहचान खोने, युद्ध की चाह रखने वाली और तकनीकी सोच की खाई में गिरने का खतरा झेल रहा है और इसके बजाय उसे अपनी एकता, शांति की खोज करने की जरूरत है, जहां हर मानव की मानवीय गरिमा को हर स्थिति में बचाने की जरूरत है। इस प्रेरितिक यात्रा का लोगो एक गोल रंगीन कांच की खिड़की है जो गोथिक महागिरजाघर के गुलाब की खिड़कियों की याद दिलाती है, जो कलिसिया में मेल जोल और एकता की सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। बीच में नुकीला मेहराब और क्रूस यात्रा के प्रेरितिक और धार्मिक आयाम को व्यक्त करते हैं। इस संरचना में मंडराता कबूतर पवित्र आत्मा की निशानी है जो एक जैतून की डाली लिए हुए है। यह पूरी मानवता में शांति की निशानी को व्यक्त करता है। नीले, सफेद और लाल रंग के छाया, रोशनी और पीले, नारंगी और उम्मीद का हरा रंग फ्रांस के रंगों को वैटिकन के रंगों से मिलाता है, जो इस प्रेरितिक यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है। इस प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य, जिससे दुनिया को जीवन मिले, संत योहन के सुसमाचार से उद्धृत है। यह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में हमें मिले सबसे बड़े उपहार को पहचानने का एक निमंत्रण है। यह उम्मीद और मेल मिलाप का आह्वान है जो हमें दुनिया में नई जिंदगी के संकेतों, शांति, मेल मिलाप और भाईचारा साझा करने हेतु मतभेदों को दूर करने के लिए साहस देता है। आदर्श वाक्य में हम फ्रांस के कलिसिया में संत पापा के स्वागत की खुशी और जिंदगी से सबों के लिए साक्ष्य की गहरी चाह को पाते हैं जो हमें ईश्वर से मिली है। करीबन 2 घंटे की हवाई यात्रा के उपरांत पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर संत पापा का गर्मजोशी स्वागत किया गया, जिसकी अगुवाई फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। छोटे स्वागत समारोह के उपरांत संत पापा लियो को राजकीय सम्मान के साथ हवाई पतन से 19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित राष्ट्रपति भवन एलेसियो लाया गया, जहां उन्होंने नागर अधिकारियों और देश के नेताओं को संबोधित किया।
0: पोप ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, विशिष्ट अधिकारी और राजनयिकों एवं देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय को फ्रांस की यात्रा हेतु उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके स्वागत के शब्दों के लिए धन्यवाद। विविध संस्कृति एवं धार्मिक परंपरा से समृद्ध देश के लोगों का अभिवादन करते हुए पोप ने उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। संत पापा ने कहा, फ्रांस की मेरी यात्रा पेरिस से शुरू हो रही है, जो देश की राजधानी है, जिससे अक्सर प्रकाश के शहर के नाम से जाना जाता है। सदियों से फ्रांस न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक रोशनी की किरण रहा है। प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य, ताकि दुनिया में जीवन हो, पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, अपने महागिरजाघर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सच्चाई की खोज के लिए समर्पित होकर फ्रांस ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक लोगों के दृष्टिकोण को बनाने में मदद की है।
2: कई प्रतिभाशाली फ्रांसीसी विद्वान जब पक्के कैथोलिक भी थे, यह स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान एवं कला, साहित्य और दर्शन शास्त्र मानवता की भलाई में योगदान दे सकते हैं, जब उन्हें सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई की खोज में लगाया जाए ताकि दुनिया में जीवन हो सके। पोप ने फ्रांस की समृद्धि पर भी गौर किया, जो कई क्षेत्रों में बेहतरीन रहा है। इसका एक उदाहरण है पेरिस में नोट्रडम महागिरजाघर की मरम्मत, जिसमें शुरू से ही कई निजी एवं सार्वजनिक संस्थान शामिल थे। पोप ने इस बड़ी परियोजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। पोप ने ईश्वर की उपासना के लिए महागिरजाघर को फिर से खोलने और दुनिया भर के आगंतुकों के लिए इसे उपलब्ध कराने को न केवल शानदार तकनीकी उपलब्धि कहा, बल्कि नई उम्मीद का प्रतीक बताया, क्योंकि जिस चीज को पूरी तरह से खत्म माना जाता था उसे आपसी सहयोग से फिर जिंदा किया गया है, जो एकता का एक प्रभावशाली सबूत है। अतः संत पापा ने सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, यह शानदार उपलब्धि देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को एक मजबूत और जिंदा उम्मीद से प्रेरित होकर बिना थके और एक साथ काम करने के लिए हिम्मत प्रदान करे। फ्रांस की दूसरी विशेषता पर ध्यान आकृष्ट करते हुए पोप ने कहा कि इसकी ख्रिस्तीय जड़ें बहुत गहरी हैं। संत एरेनियस के समय और राजा क्लोविस प्रथम के बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा देश की आत्मा ने ख्रिस्तीय धर्म से एक समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और मिशनरी उत्साह लिया है, जो आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसलिए 16वीं सदी के फ्रांस में मानवतावाद फला फूला, जो क्लासिकल ग्रीस और रोम की विरासत को ख्रिस्तीय धर्म के साथ जोड़ने का एक तरीका था। पुनर्जागरण और बाद में महान विचारकों के द्वारा फ्रांस ने दुनिया में तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें मानव के स्वभाव पर आधारित मानव अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देना शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सार्वभौमिक नैतिक जरूरत बताया, जो सुसमाचार के संदेश में भी प्रेरणा और पूर्णता का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आज दुनिया में विज्ञान के माध्यम से हर प्रकार के दुखों को दूर करने का प्रलोभन है, जो अक्सर आत्म भ्रम का खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि जब विज्ञान एवं तकनीकी गहरी समझ से संचालित नहीं होते तो वे तुरंत ऐसे हल दे सकते हैं जो लोगों की इच्छाओं और उनके दर्द को तो ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें उस महान भलाई से भटका सकते हैं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। संत पापा ने विज्ञान एवं तकनीकी से लाभ कमाने के लिए उन कृत्यों के लिए चिंता जताई जो अनुवांशिक हेरफेर, सर्वोगेसी, मानव अंगों के व्यापार या खुद की मौत का इंतजाम करने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपसी सम्मान और हर इंसान की जान की सुरक्षा हम में से हर एक का कर्तव्य है। इसलिए संत पापा ने देश के नेताओं और प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि युद्ध की संभावना से कभी हार ना माने, बल्कि बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने में लगे रहें, ताकि ऐसे शांतिपूर्ण समाज बनाए जा सकें जो लोगों और मानव प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान करें। फ्रांस अपने पारंपरिक मूल्यों के प्रति वफादार रहकर ऐसी शांति के लिए काम करे जो निरस्त्रीकृत एवं बिना हथियार के हो। आपकी स्वतंत्रता आम भलाई की लगातार चिंता में बढ़े। आपका भाईचारा पूरे मानव परिवार को अपनाएं और जिस बराबरी की आप ख्वाहिश रखते हैं वह हमेशा न्याय एवं दया की नींव पर बनी हो। लोगों के बीच की विविधताओं को मिटाकर नहीं, बल्कि उन्हें पूरे समाज के लाभ के लिए मिलजुल कर फलने फूलने देकर। संत पापा ने अंत में कहा, मैं एक बार फिर इस मुलाकात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके महान देश के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। ईश्वर इसे शांति, एकता एवं खुशहाली दे ताकि दुनिया में जीवन हो। मैं इन उम्मीदों को फ्रांस की संरक्षिका धन्य कुआरी मरियम की ममता में प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। ईश्वर फ्रांस एवं सभी फ्रांसीसी लोगों को आशीर्वाद दें।
1: दोपहर भोजन के उपरांत संत पापा ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भेंट की और वहां उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सदस्यों, सदस्य देशों, यूनेस्को के सदस्यों को संबोधित किया।
3: संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में कहा, महानिदेशक महोदय, महासभा के अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, माननीय गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में आपके साथ शामिल होकर खुशी हो रही है, जहां भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर पूरे मानव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम में सहयोग करती हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना, ताकि न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों व बुनियादी आज़ादी के लिए सार्वभौमिक सम्मान को और बढ़ाया जा सके। एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश ही असल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। हम अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हैं, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हर कोई अपनापन महसूस करे और हर व्यक्ति तरक्की कर सके, ताकि हर जगह लोग शांति से रह सके और खुशहाल हो सके। संत पापा शांति के एक गवाह के तौर पर वहां उपस्थित सभी का स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि वे एक धर्माध्यक्ष के रूप में कलीसिया की ओर से यह बताने आए हैं कि कलीसिया हमेशा बातचीत की कोशिश करती है और हर व्यक्ति और नेक नियत वाले सभी स्त्री पुरुषों तक अपना संदेश पहुँचाना चाहती है। संत पापा ने कहा कि एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प उस मिशन का हिस्सा है जिसे हमने इतिहास के दौरान साझा करना सीखा है। आज के समय में यूनेस्को हमारे काम के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उस प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूती से पूरा करने का एक लक्ष्य और जरिया दोनों है। साल 2027 में यूनेस्को में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन के 75वें साल पूरे होंगे। यह इस भरोसे पर टिकी है कि भविष्य सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हर पुरुष और महिला की जन्मजात गरिमा का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। 1952 से परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन इस नजरिए से यूनेस्को की पहलों की समीक्षा करता रहा है और उनमें सहयोग देता रहा है, साथ ही देशों के बीच बातचीत में अपना खास योगदान भी देता रहा है। ऐसा उसने सच्चे मानवीय विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया है, और विकास सच्चा तभी होता है जब वह हर इंसान और पूरे इंसान के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में हो। संत पापा ने याद किया कि 46 साल पहले इस सभा को संबोधित करते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि मानव जाति कला और तर्क के माध्यम से जीती है, नतीजतन संस्कृति की बदौलत ही मनुष्य वास्तव में मानवीय जीवन जीता है। संस्कृति शब्द का अर्थ ही उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मानवता अपनी सभी गतिविधियों को अर्थ प्रदान करती है। संत पापा ने कहा कि वे परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। वे यूनेस्को को न केवल एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी देखने के लिए कहते हैं जहां मानवता स्वयं पर, अपने इतिहास और अपने भविष्य पर चिंतन कर सकती है। संत पापा ने कहा, आज के दौर में कई मुश्किल और जरूरी मुद्दों के बीच हमारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलीजुली भावनाओं से देखती है। एक तरफ इन संस्थाओं से ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद की जाती है जिनसे कोई भी अकेला देश नहीं निपट सकता, दूसरी तरफ इन्हीं संस्थाओं को अपनी असरदार भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब बातचीत को शांति का जरिया या मिलकर भलाई करने के मौके के बजाय कार्यवाही में रुकावट या सिर्फ दिखावा माना जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो चौधरी का फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कैथोलिक कलीसिया के वैश्विक धर्म गुरु संत पापा लियो चौधरी ने अपनी पांचवी विश्व प्रेरित यात्रा शुरू की। संत पापा लियो चौधरी ने 25 सितंबर की सुबह रोम के स्थानीय समय अनुसार 7:58 में ईटा हवाई जहाज A321 से उड़ान भरते हुए पेरिस के ओली हवाई पतन पर स्थानीय समय 9:56 में लैंड किया। संत पापा लियो चौधरी के पूर्व संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी

शांति, संस्कृति और एकता जैसे विषयों पर बातें करते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों, नागर समाज के अधिकारियों के अलावे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वे युवाओं, स्थानीय कलिसिया और सिनोडल असेंबली के सदस्यों के साथ साथ कलिसिया में दीक्षा प्राप्त से भी भेंट करेंगे। इस यात्रा का एक मजबूत सामाजिक आयाम बखिता निवास की भेंट भी होगी, जो सामाजिक कार्य का एक संस्थान है। इसके साथ ही संत पापा लूर्द की भेंट करते हुए नोटरडेम की देखरेख में संलग्न लोगों से मुलाकात करेंगे। मरियम के इस तीर्थ स्थल में संत पापा लियो प्रार्थना में कुछ पल अपना समय व्यतीत करते हुए समर्पित जीवन के लोगों के समुदाय और अति संवेदनशील लोगों, विशेषकर कुछ एक उन लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे जिन्हें कलिसिया में दुराचार का शिकार होना पड़ा है। संत पापा लियो 14वीं की प्रेरितिक यात्रा का अंतिम पड़ाव मेट्स होगा, जो तीन सीमाओं को मिलाने वाला एक शहर है, जिसके ऐतिहासिक बाहरी हिस्से आज भी दूसरे विश्व युद्ध के गवाह देते हैं। संत पापा लियो अलग अलग धर्मों के लोगों से भेंट करते हुए शांति और एकता हेतु यूरोप की जड़ें एक कार्यक्रम में सहभागी होंगे, जिनमें वे लोगों के बीच शांति और एकता की अपील करेंगे और इसके साथ ही अपनी प्रेरितिक यात्रा का समापन यूखारिस्तीय बलिदान से करेंगे। वैटिकन रेडियो संपादक विभाग के अधिकारी आंद्रिया तोर्नेल्ली ने संत पापा लियो 14वें की इस प्रेरितिक यात्रा के संबंध में अपने बुधवारीय संपादकीय में लिखा कि यह एक खास प्रेरितिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समुदायों में उनके विश्वास को मजबूत करना है और साथ ही शांति और एकता का संदेश देना है। ज्योति के शहर में संत पापा लियो की यह प्रेरितिक यात्रा किसी को दोष देने हेतु नहीं और न ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर वाद विवाद करने का है, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से मिलन का है। फ्रांस की उनकी यह प्रेरितिक यात्रा उन लोगों को हिम्मत देने आना है जो अमानवता के आगे हार नहीं मानते और नहीं झुकते हैं। वे सुसमाचार के वचनों को लेकर जाते हैं, लेकिन सुसमाचार के उन वचनों को नहीं जो हवा में लटकती हो या जिसे सिर्फ विचारों या संदेशों तक सीमित रखा जाता हो। इसके बदले वे उन वचनों को लेकर जाते हैं, आंद्रिया तोर्नेल्ली ने लिखा, जो शरीर के रूप में मानव इतिहास में प्रवेश किया, हमारे समय के घावों से अपने को लड़खड़ाता पाया और हमारे बीच उस सत्य की ज्योति को प्रसारित किया जो झूठेपन के धुंध को हमसे दूर करती है। यह हमारे लिए एक वह वचन है जो दूसरों के दुखों से, युद्ध की गोलाबारी से घायल होने का निमंत्रण देती है, जो राजनैतिक सक्रियता और निष्ठा में रोकी जा सकती है। आंद्रिया ने लिखा, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम उन लोगों के चेहरे से मुंह ना मोड़ें जो भविष्य की तलाश में भूमध्य सागरीय प्रांत पार करते हुए पुरानी महाद्वीप में जीवन की खोज हेतु आते हैं। फ्रांस की इस जमीन से, जिसे अपनी पुरानी जड़ों, अपने इतिहास और दुनिया में अपनी भूमिका पर बहुत गर्व है, संत पापा लियो 14वें पूरे यूरोप से बात करेंगे। एक ऐसा यूरोप जो अपनी पहचान खोने, युद्ध की चाह रखने वाली और तकनीकी सोच की खाई में गिरने का खतरा झेल रहा है और इसके बजाय उसे अपनी एकता, शांति की खोज करने की जरूरत है, जहां हर मानव की मानवीय गरिमा को हर स्थिति में बचाने की जरूरत है। इस प्रेरितिक यात्रा का लोगो एक गोल रंगीन कांच की खिड़की है, जो गोथिक महागिरजाघर के गुलाब की खिड़कियों की याद दिलाती है, जो कलिसिया में मेल जोल और एकता की सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। बीच में नुकीला मेहराब और क्रूस यात्रा के प्रेरितिक और धार्मिक आयाम को व्यक्त करते हैं। इस संरचना में मंडराता कबूतर पवित्र आत्मा की निशानी है, जो एक जैतून की डाली लिए हुए है। यह पूरी मानवता में शांति की निशानी को व्यक्त करता है। नीले, सफेद और लाल रंग के छाया, रोशनी और पीले, नारंगी और उम्मीद का हरा रंग

0: फ्रांस के रंगों को वैटिकन के रंगों से मिलाता है, जो इस प्रेरितिक यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है। इस प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य, जिससे दुनिया को जीवन मिले, संत योहन के सुसमाचार से उद्धृत है। यह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में हमें मिले सबसे बड़े उपहार को पहचानने का एक निमंत्रण है। यह उम्मीद और मेल मिलाप का आह्वान है, जो हमें दुनिया में नई जिंदगी के संकेतों, शांति, मेल मिलाप और भाईचारा साझा करने हेतु मतभेदों को दूर करने के लिए साहस देता है। आदर्श वाक्य में हम फ्रांस के कलीसिया में संत पापा के स्वागत की खुशी और जिंदगी से सबों के लिए साक्ष्य की गहरी चाह को पाते हैं, जो हमें ईश्वर से मिली है। करीबन 2 घंटे की हवाई यात्रा के उपरांत पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर संत पापा का गर्मजोशी स्वागत किया गया, जिसकी अगुवाई फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। छोटे स्वागत समारोह के उपरांत संत पापा लियो को राजकीय सम्मान के साथ हवाई पतन से 19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित राष्ट्रपति भवन एलिसियो लाया गया, जहां उन्होंने नागर अधिकारियों और देश के नेताओं को संबोधित किया।
1: पोप ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, विशिष्ट अधिकारी और राजनयिकों एवं देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय को फ्रांस की यात्रा हेतु उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके स्वागत के शब्दों के लिए धन्यवाद। विविध संस्कृति एवं धार्मिक परंपरा से समृद्ध देश के लोगों का अभिवादन करते हुए पोप ने उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। संत पापा ने कहा, फ्रांस की मेरी यात्रा पेरिस से शुरू हो रही है, जो देश की राजधानी है, जिससे अक्सर प्रकाश के शहर के नाम से जाना जाता है। सदियों से फ्रांस न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक रोशनी की किरण रहा है। प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य, ताकि दुनिया में जीवन हो, पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, अपने महागिरजाघर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सच्चाई की खोज के लिए समर्पित होकर फ्रांस ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक लोगों के दृष्टिकोण को बनाने में मदद की है। कई प्रतिभाशाली फ्रांसीसी विद्वान, जो पक्के कैथोलिक भी थे, यह स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान एवं कला, साहित्य और दर्शन शास्त्र मानवता की भलाई में योगदान दे सकते हैं, जब उन्हें सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई की खोज में लगाया जाए, ताकि दुनिया में जीवन हो सके। पोप ने फ्रांस की समृद्धि पर भी गौर किया, जो कई क्षेत्रों में बेहतरीन रहा है। इसका एक उदाहरण है पेरिस में नोट्रडम महागिरजाघर की मरम्मत, जिसमें शुरू से ही कई निजी एवं सार्वजनिक संस्थान शामिल थे। पोप ने इस बड़ी परियोजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। पोप ने ईश्वर की उपासना के लिए महागिरजाघर को फिर से खोलने और दुनिया भर के आगंतुकों के लिए इसे उपलब्ध कराने को न केवल शानदार तकनीकी उपलब्धि कहा, बल्कि नई उम्मीद का प्रतीक बताया, क्योंकि जिस चीज को पूरी तरह से खत्म माना जाता था, उसे आपसी सहयोग से फिर जिंदा किया गया है, जो एकता का एक प्रभावशाली सबूत है। अतः संत पापा ने सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, यह शानदार उपलब्धि देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को एक मजबूत और जिंदा उम्मीद से प्रेरित होकर बिना थके और एक साथ काम करने के लिए हिम्मत प्रदान करे। फ्रांस की दूसरी विशेषता पर ध्यान आकृष्ट करते हुए पोप ने कहा कि इसकी ख्रिस्तीय जड़ें बहुत गहरी हैं। संत एरेनियस के समय और राजा क्लोविस प्रथम के बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा देश की आत्मा ने ख्रिस्तीय धर्म से एक समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और मिशनरी उत्साह लिया है, जो आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसलिए 16वीं सदी के फ्रांस में मानवतावाद फला फूला, जो क्लासिकल ग्रीस और रोम की विरासत को ख्रिस्तीय धर्म के साथ जोड़ने का एक तरीका था। पुनर्जागरण और बाद में महान विचारकों के द्वारा फ्रांस ने दुनिया में तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें मानव के स्वभाव पर आधारित मानव अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देना शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सार्वभौमिक नैतिक जरूरत बताया, जो सुसमाचार के संदेश में भी प्रेरणा और पूर्णता का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आज दुनिया में विज्ञान के माध्यम से हर प्रकार के दुखों को दूर करने का प्रलोभन है, जो अक्सर आत्मभ्रम का खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि जब विज्ञान एवं तकनीकी गहरी समझ से संचालित नहीं होते तो वे तुरंत ऐसे हल दे सकते हैं जो लोगों की इच्छाओं और उनके दर्द को तो ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें उस महान भलाई से भटका सकते हैं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। संत पापा ने विज्ञान एवं तकनीकी से लाभ कमाने के लिए उन कृत्यों के लिए चिंता जताई जो अनुवांशिक हेर फेर, सर्वोगेसी, मानव अंगों के व्यापार या खुद की मौत का इंतजाम करने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपसी सम्मान और हर इंसान की जान की सुरक्षा हम में से हर एक का कर्तव्य है। इसलिए संत पापा ने देश के नेताओं और प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि युद्ध की संभावना से कभी हार ना माने, बल्कि बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने में लगे रहें, ताकि ऐसे शांतिपूर्ण समाज बनाए जा सकें जो लोगों और मानव प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान करें। फ्रांस अपने पारंपरिक मूल्यों के प्रति वफादार रहकर ऐसी शांति के लिए काम करे जो निरस्त्रीकृत एवं बिना हथियार के हो। आपकी स्वतंत्रता आम भलाई की लगातार चिंता में बढ़े। आपका भाईचारा पूरे मानव परिवार को अपनाएं और जिस बराबरी की आप ख्वाहिश रखते हैं वह हमेशा न्याय एवं दया की नींव पर बनी हो। लोगों के बीच की विविधताओं को मिटाकर नहीं, बल्कि उन्हें पूरे समाज के लाभ के लिए मिलजुल कर फलने फूलने देकर। संत पापा ने अंत में कहा, मैं एक बार फिर इस मुलाकात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके महान देश के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। ईश्वर इसे शांति, एकता एवं खुशहाली दे ताकि दुनिया में जीवन हो। मैं इन उम्मीदों को फ्रांस की संरक्षिका धन्य कुआरी मरियम की ममता में प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। ईश्वर फ्रांस एवं सभी फ्रांसीसी लोगों को आशीर्वाद दें।
0: दोपहर भोजन के उपरांत संत पापा ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भेंट की और वहां उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सदस्यों, सदस्य देशों, यूनेस्को के सदस्यों को संबोधित किया।
2: संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में कहा, महानिदेशक महोदय, महासभा के अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, माननीय गणमान्य अतिथि गण, देवियों और सज्जनों, मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में आपके साथ शामिल होकर खुशी हो रही है, जहां भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर पूरे मानव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम में सहयोग करती हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना, ताकि न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों व बुनियादी आज़ादी के लिए सार्वभौमिक सम्मान को और बढ़ाया जा सके। एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश ही असल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। हम अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हैं, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हर कोई अपनापन महसूस करे और हर व्यक्ति तरक्की कर सके, ताकि हर जगह लोग शांति से रह सकें और खुशहाल हो सकें। संत पापा शांति के एक गवाह के तौर पर वहां उपस्थित सभी का स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि वे एक धर्माध्यक्ष के रूप में कलीसिया की ओर से यह बताने आए हैं कि कलीसिया हमेशा बातचीत की कोशिश करती है और हर व्यक्ति और नेक नियत वाले सभी स्त्री पुरुषों तक अपना संदेश पहुँचाना चाहती है। संत पापा ने कहा कि एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प उस मिशन का हिस्सा है जिसे हमने इतिहास के दौरान साझा करना सीखा है। आज के समय में यूनेस्को हमारे काम के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उस प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूती से पूरा करने का एक लक्ष्य और जरिया दोनों है। साल 2027 में यूनेस्को में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन के 75वें साल पूरे होंगे। यह इस भरोसे पर टिकी है कि भविष्य सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हर पुरुष और महिला की जन्मजात गरिमा का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। 1952 से परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन इस नजरिए से यूनेस्को की पहलों की समीक्षा करता रहा है और उनमें सहयोग देता रहा है, साथ ही देशों के बीच बातचीत में अपना खास योगदान भी देता रहा है। ऐसा उसने सच्चे मानवीय विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया है, और विकास सच्चा तभी होता है जब वह हर इंसान और पूरे इंसान के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में हो। संत पापा ने याद किया कि 46 साल पहले इस सभा को संबोधित करते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि मानव जाति कला और तर्क के माध्यम से जीती है, नतीजतन संस्कृति की बदौलत ही मनुष्य वास्तव में मानवीय जीवन जीता है। संस्कृति शब्द का अर्थ ही उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मानवता अपनी सभी गतिविधियों को अर्थ प्रदान करती है। संत पापा ने कहा कि वे परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। वे यूनेस्को को न केवल एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी देखने के लिए कहते हैं जहां मानवता स्वयं पर, अपने इतिहास और अपने भविष्य पर चिंतन कर सकती है। संत पापा ने कहा, आज के दौर में कई मुश्किल और जरूरी मुद्दों के बीच हमारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिली जुली भावनाओं से देखती है। एक तरफ इन संस्थाओं से ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद की जाती है जिनसे कोई भी अकेला देश नहीं निपट सकता, दूसरी तरफ इन्हीं संस्थाओं को अपनी असरदार भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब बातचीत को शांति का जरिया या मिलकर भलाई करने के मौके के बजाय कार्यवाही में रुकावट या सिर्फ दिखावा माना जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार।
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: चिरिदोर्म अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलिसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है,

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त दया कर,
1: ख्रीस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त हमारी सुन,
1: ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रीस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मपुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं फादर संजय दिलीप एक्का।

0: कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु पोप लियो 14वें इस समय फ्रांस की प्रेरित यात्रा पर हैं। 25 सितंबर से पेरिस में शुरू हुई प्रेरित यात्रा में पोप ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन से मुलाकात करते हुए की। उसके बाद वे यूनेस्को गए, नोटरडेम महागिरजा घर में संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की और देश के सबसे बड़े स्टेडियम में लगभग 80,000 युवाओं के साथ जागरण प्रार्थना का संचालन किया।
1: Deus in auditorio meo me intende।
0: 25 सितंबर की शाम रोशनी से भरे मशहूर पेरिस के महागिरजाघर में पोप लियो 14वें ने संध्या वंदना का नेतृत्व किया और विश्वासियों से कहा कि हमें फ्रांसीसी महागिरजाघर नोटरडेम की तरह दोबारा जन्म लेना होगा। जब पोप लियो 14वें पेरिस के महागिरजाघर में संध्या वंदना का नेतृत्व करने पहुंचे तो नोटरडेम महागिरजाघर रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो कि 15 अप्रैल 2019 को आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त विले लुमियर के पूजा स्थल और मशहूर प्रतीक मरामत किए गए और पुनर्स्थापित महागिरजाघर के लिए यह एक उपयुक्त उत्सव था। उस दिन आग की लपटों में घिरा महागिरजाघर और जब आग ने महागिरजाघर को जला दिया तो सड़कों पर प्रार्थना करते लोगों की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और खबरों के जरिए दुनिया भर में फैल गए थे। आज फ्रांस की कलीसिया फिर से एक साथ आई है, इस बार खुशी मनाने के लिए, क्योंकि पोप ने महागिरजाघर का दौरा किया और संध्या वंदना की अगुवाई की। जब सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों पर पड़ी तो वह चमकने लगी। दीवारों पर रंगीन पैटर्न धीरे धीरे घूमने लगे। इस बीच एक ऑर्गन बजा और गायक दल ने गाना शुरू किया, जबकि धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्मसंगी, सेमिनरी छात्र और फ्रांसीसी कलीसिया के सभी विश्वासी पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ बड़ी भक्ति से प्रार्थना में लीन रहे। संध्या वंदना के पहले पोप लियो ने कांटो के ताज के एक पौत्र अवशेष को श्रद्धांजलि दी, जिससे यीशु ख्रिस्त के दुख भोग के दौरान उनके सिर पर रखा गया था या उनके पुनरुत्थान से पहले उनके दुख और बलिदान का प्रतीक है। पोप लियो ने अपने प्रवचन में कहा, हम इस जगह पर शाम की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने सदियों से पेरिस के लोगों को किसी और जगह से बढ़कर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, आग लगने के समय हमने भी बेचैनी से देखा, इस बात का एहसास किया कि इंसान अनहोनी के सामने कितने बेबस होते हैं। उस दुखद पल में हमें एहसास हुआ कि नोटरडेम एक स्मारक से कहीं बढ़कर है और यहाँ हम एक सभ्यता के जीते जागते केंद्र में खड़े हैं, जहाँ अतीत और भविष्य मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग और धरती एक साथ जुड़ते हैं। पोप ने अपना प्रवचन फ्रांस की कलीसिया को यह कहकर समाप्त किया कि वे ऐसी कलीसिया के जीते जागते पत्थर बने जो भविष्य की उम्मीद करता हो और उससे नहीं डरता हो। उन्होंने कहा, इस महागिरजाघर का पुनर्जन्म हुआ है ताकि आप भी इसके साथ पौत्रता और रोज के मिशन की ओर एक नई तेजी के साथ फिर से जन्म ले सकें। उन्होंने वहां उपस्थित विश्वासियों को संबोधित कर कहा, ईश्वर का प्यार सभी तक पहुंचाएं, एक ऐसा प्यार जिसमें जीवन और दिल बदलने और गहरे से गहरे जख्मों को भरने की ताकत हो, राख के अंधेरे से रोशनी लाने की ताकत। आइए हम अपनी नजरें कुंवारी मरियम और बालक येसु की 14वीं सदी की प्रतिमा की ओर उठाएं, जिससे आग ने छुआ तक नहीं था और अब यह एक बार फिर हमारे सामने चमक रही है। फ्रांस में पोप लियो 14वें का पहला दिन एक जागरण प्रार्थना सभा के साथ समाप्त हुआ, जिसमें करीब 80,000 युवा शामिल हुए। पोप ने उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें बिना किसी डर के मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा दिन संत पापा लियो 14वें ने सामाजिक सहायता और एकीकरण के मेसन बखीता केंद्र के दौरे से शुरुआत की। केंद्र के मुख्य द्वार पर संत पापा लियो का स्वागत पेरिस के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष लोरेट उल्रिक, केंद्र की निदेशिका और मीटिंग के सह नियोजक ने किया। केंद्र के अंदर संत पापा ने एक यादगार पट्टिका का अनावरण किया। केंद्र की निदेशिका के स्वागत भाषण के बाद केंद्र के 3 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं पेरिस में आपके साथ इस दूसरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। यह घर पूरे घर के लिए इस बात का गवाह है कि एक दूसरे से मिलना और सम्मान व शांति के साथ मिलजुल कर रहना संभव है। संत पापा ने कहा कि संत बकीता से जुड़ा यह सामाजिक सहायता और एकीकरण का केंद्र हमें प्यार की सभ्यता बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह सभ्यता उस संस्कृति का विकल्प है जो समुदायों को तोड़ती है और शहरों को

0: आने की शिक्षा को बस आम तौर पर मान लेना काफी नहीं है। इस महान रहस्य को सच में समझने के लिए हमें यह साफ तौर से जानना होगा कि प्रभु ने ऐसा शरीर धारण किया जो भूख और प्यास महसूस करता है और जो कमजोरी और कैद का अनुभव करता है। गरीब और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह इन स्त्री पुरुषों के जरिए हमसे मिलने और प्रेम पाने का मौका देते रहते हैं। ये लोग हमें खुद से ऊपर उठकर दान पुण्य करने का साहस दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उपहारों के आदान प्रदान से जुड़ी है, जो हर मुलाकात में नए सिरे से होता है। कोई भी इतना गरीब नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, और कोई भी इतना अमीर नहीं है कि उसे कुछ पाने की जरूरत ना हो। हर व्यक्ति की सीमाएं दूसरों की रहस्यमयी उपस्थिति के लिए एक द्वार बन जाती हैं, जिनमें जीवन के ईश्वर करीब आते हैं और वहां जीवन भरपूर होता है। संत पापा ने कहा कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आंख हाथ से यह नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ना ही सिर पैर से यह कह सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के जो अंग कमजोर लगते हैं वे भी बहुत जरूरी हैं। जब संत पौलुस ने प्राचीन रोमन दुनिया के इस अमीर और सांस्कृतिक रूप से विविध शहरों में से एक में रहने वाले क्रिश्चियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया है कि कम महत्वपूर्ण सदस्य को अधिक सम्मान मिले, ताकि शरीर के भीतर कोई फूट न पड़े, बल्कि सदस्य एक दूसरे का समान रूप से ध्यान रखें। अंत में संत पापा लियो 14वें ने मेसन बखीता और उन सभी ख्रिस्तियों को धन्यवाद दिया जो पूरे फ्रांस में इसी तरह की सेवा कार्य में संलग्न है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की देखभाल करने की उस भावना को बनाए रखें जो भाईचारे के साथ स्वागत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बातचीत के जरिए लोगों की भावना को ऊंचा उठाती है और दुनिया को और अधिक मानवीय बनाती है। मेसन बखीता केंद्र का दौरा करने के बाद संत पापा लियो कार से इंस्टीट्यूट कैथलिक दी पेरिस के लिए रवाना हुए।
1: संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के कलिसियाई सभा के पुरोहितों, समर्पित जीवन के लोगों, दीक्षार्थियों और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से भेंट की। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में हम अपने भाई बहनों तक पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र आत्मा है जो आपकी कलिसियाई समुदाय को प्रेरित करते हैं, और विस्तृत रूप में कहा जाए तो फ्रांस के कलिसिया के जीवन को ईश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा हमें किस ओर अग्रसर करते हैं जहां हम दीक्षार्थियों का साथ दे सकें, वे जो नए बपतिस्मा प्राप्त हैं, जो नई शुरुआत करते हैं। संत पापा ने कुछ सालों पहले एक फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की याद कराते हुए और उसे अपने में सम्माहित करने का आह्वान करते हुए कहा कि कलिसिया दीक्षा की एक अवस्था है, वह जो दीक्षार्थियों को मदद करती है, नए बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास में लौटने वालों का, वह उन्हें समय प्रदान करती, उन्हें ठोस तथा निरंतर दिशा निर्देशित करती है। वास्तव में ख्रिस्तीय दीक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अपने में पूर्ण रूपेण एक प्रेरितिक प्रयास का केंद्र रहा है। उस समय भी कई प्रस्ताव आए थे, और उन सालों में हुए ईश शास्त्रीय और पूजन विधि से जुड़े विकास ने द्वितीय वैटिकन धर्म सभा के दीक्षांत के कार्यक्रमों को नया रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि आज परिस्थितियां अलग हैं, फिर भी आप दीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने की इस गहरी प्रेरिताई संबंधी परंपरा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो तरीका पहले से चल रहा था उसे 1996 में और मजबूत किया गया। संत पापा लियो ने कहा कि दीक्षांत की प्रक्रिया में होने का अर्थ उन लोगों का स्वागत करने से है जो ईश्वर की खोज करते हैं। उनमें दोनों एक अवसर और एक प्रेरिताई की खोज करना है। अवसर हमारे लिए उन बातों में निहित है कि विश्वासियों के रूप

0: में हम अपने विश्वास की यात्रा को नवीन बनाते और सुसमाचार की खुशी को नए रूप में अनुभव करते हैं। वहीं प्रेरिताई हमारे लिए उन्हें पोषित करने और उनके दिशा निर्देशन में निहित है। यद्यपि उन्होंने संस्कारों को ग्रहण कर लिया है, हमें आनंद में उनका स्वागत करने की जरूरत है जो हमारे पास आते हैं। उनके आध्यात्मिक अनुभव का विकास करने, उनके व्यक्तिगत इतिहास का सम्मान और ईश्वर के संदेश को घोषित करने हेतु बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कई लोग बाद में वही सवाल पूछेंगे जो हमने मैरियल के साक्ष्य में सुना, बपतिस्मा के बाद खालीपन की अनुभूति से कैसे बचा जा सकता है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः हमें चाहिए कि हम उन लोगों को पूरी तरह अपने समुदाय में और बपतिस्मा के उपरांत प्रार्थना में मिलन में शामिल करते हुए उनके लिए स्वागत और प्रशिक्षण का एक अवसर दें जो उन्हें ख्रिस्तीय जीवन और विश्वास के विभिन्न पहलुओं को पूर्ण रूपेण आलिंगन करने में मदद करता हो। नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में उन्हें चाहिए कि वे ख्रिस्तीय विश्वास की नींव को गहराई से समझते हों, धर्म ग्रंथ और ईश शास्त्रीय बातों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए विश्वास के घोषणा के अनुरूप धर्म सिद्धांतों की समृद्धि और ख्रिस्तीय नैतिक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को और अधिक पूरी तरह से समझते हों। हमें चाहिए कि हम उन्हें कलिसियाई धर्म विधि के जीवन से परिचय कराएं। जैसे कि हमने साक्ष्य में सुना, संत पापा ने कहा कि कुछ एक के लिए धर्म विधि का अनुष्ठान विश्वास के रहस्य में प्रवेश करने का आधार बनता है। यह कलिसियाई जीवन का एक मूलभूत तथ्य है जो हमसे प्रेरितिक सेवा की मांग करती है, जो वैटिकन द्वितीय धर्म सभा की शिक्षाओं में आधारित है। वास्तव में धर्म विधि के बारे में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह धर्म शिक्षा के बाद आती है, जो कोई उन बातों को लागू करता है जिसे उसने सीखा है। इसके विपरीत यह मसीह के पास का रहस्य को अभिव्यक्त करती है जो हमारे लिए सुसमाचार और ईश्वर के जीवन को व्यक्त करता है। इसके सुर ताल में, भाषा और अनुष्ठान में धर्म विधि परिवर्तन की यात्रा बनती और संस्कारों के लिए हमें तैयार करती है।
1: Pour mener à bien cette mission, le rôle des formateurs est essentiel. Comme nous l'enseigne l'antique tradition de l'Église, il s'agit de préparer des parrains et des marraines des communautés.
0: प्रेरिताई के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन कलिसिया में हम इसे धर्म माता पिता के रूप में प्रस्तुत पाते हैं जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी ओर से एक विशेष तैयारी करें जिससे वे नए दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों की अच्छी अगुवाई कर सकें। इस संदर्भ में संत पापालियो ने ख्रिस्तीय वयस्क दीक्षांत रीति की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही प्रेरितिक कार्य में संलग्न लोगों को चाहिए कि वे सिर्फ धर्म ग्रंथ, ईश शास्त्र, धर्म विधि और आध्यात्मिक जीवन तक ही प्रशिक्षण प्राप्त न करें, लेकिन मानवीय गुणों में भी, जिससे वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन लोगों की मदद कर सकें। संत पापा ने कहा कि जैसे हमने सुना, कुछ लोग साधारण आध्यात्मिक प्यास के साथ आते हैं, जीवन के अर्थ की खोज में, सुसमाचार के आकर्षण में, वहीं दूसरे हैं जो दर्द भरे अनुभवों, अकेलेपन और बड़ी कठिनाइयों से दबे आते हैं। ऐसी स्थिति में निकटता, करुणा और कोमलता हमारे लिए अर्थपूर्ण होते हैं। हमें चाहिए कि हम एक संतुलन की स्थिति में उन्हें सुने, उनका स्वागत करें। इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम उन्हें विश्वास की चुनौतियों का सामना करने में प्रोत्साहन दें। इस यात्रा में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गति का धीरे से और सावधानी पूर्वक भ्रातृत्व में, सहचर्य में सम्मान करें। यह हमें एक साथ चलने की शैली को अपनाने का आह्वान करती है। अपने ख्रिस्तीय विश्वास के मार्ग में हम एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। हम पुरोहितों और लोक धर्मियों, दादा दादियों और दीक्षार्थियों, प्रेरिताई के अगुओं और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में मिलकर विकास करते हैं। संत पापा लियो ने संत अगुस्टिन की याद दिलाते हुए कहा कि वे संत अम्ब्रोस के द्वारा विश्वास से परिचित हुए। उनका विश्वास एक छोटे बीज की भांति था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। यद्यपि वह बीज बढ़ा और विकसित होकर एक बड़ा वृक्ष बना, जिसकी शाखाओं में हम आज भी अपने लिए पनाह को पाते हैं। आप सभी नए बपतिस्मा प्राप्तों को देखते हुए मैं आप सबों को सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि आप फ्रांस के कलिस्से के लिए पूर्णतः की प्रतिज्ञा स्वरूप हैं। इसके बदले में आप इस समाज के लिए सुसमाचार के प्रेरित बने। इस महान भूमि का साक्ष्य आपकी यात्रा को पोषित करे। एक दूसरे का स्वागत करते हुए हम सब मिलकर फ्रांस में कलिस्से के जीवंत समुदाय का निर्माण करें, जो आस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने फ्रांस के मुख्य संरक्षिका कुमारी मरियम की ममता में सुरक्षा और शहर के रक्षक संत जेनेविव और संत डेनिस की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए संत पापा ने सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
2: Amen. Amen.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं फादर संजय दिलीप एक्का।

0: कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु पोप लियो 14वें इस समय फ्रांस की प्रेरित यात्रा पर हैं। 25 सितंबर से पेरिस में शुरू हुई प्रेरित यात्रा में पोप ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करते हुए की। उसके बाद वे यूनेस्को गए, नोटरडेम महागिरजाघर में संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की और देश के सबसे बड़े स्टेडियम में लगभग 80,000 युवाओं के साथ जागरण प्रार्थना का संचालन किया।
1: Deus in auditorio meo me
0: 25 सितंबर की शाम रोशनी से भरे मशहूर पेरिस के महागिरजाघर में पोप लियो 14वें ने संध्या वंदना का नेतृत्व किया और विश्वासियों से कहा कि हमें फ्रांसीसी महागिरजाघर नोटरडेम की तरह दोबारा जन्म लेना होगा। जब पोप लियो 14वें पेरिस के महागिरजाघर में संध्या वंदना का नेतृत्व करने पहुंचे तो नोटरडेम महागिरजाघर रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो कि 15 अप्रैल 2019 को आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त विले लुमियर के पूजा स्थल और मशहूर प्रतीक मरामत किए गए और पुनर्स्थापित महागिरजाघर के लिए यह एक उपयुक्त उत्सव था। उस दिन आग की लपटों में घिरा महागिरजाघर और जब आग ने महागिरजाघर को जला दिया तो सड़कों पर प्रार्थना करते लोगों की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और खबरों के जरिए दुनिया भर में फैल गए थे। आज फ्रांस की कलीसिया फिर से एक साथ आई है, इस बार खुशी मनाने के लिए, क्योंकि पोप ने महागिरजाघर का दौरा किया और संध्या वंदना की अगुवाई की। जब सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों पर पड़ी तो वह चमकने लगी, दीवारों पर रंगीन पैटर्न धीरे धीरे घूमने लगे। इस बीच एक ऑर्गन बजा और गायक दल ने गाना शुरू किया, जबकि धर्माध्यक्ष पुरोहित धर्मसंगी सेमिनरी छात्र और फ्रांसीसी कलीसिया के सभी विश्वासी पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ बड़ी भक्ति से प्रार्थना में लीन रहे। संध्या वंदना के पहले पोप लियो ने कांटो के ताज के एक पौत्र अवशेष को श्रद्धांजलि दी जिससे यीशु ख्रिस्त के दुख भोग के दौरान उनके सिर पर रखा गया था या उनके पुनरुत्थान से पहले उनके दुख और बलिदान का प्रतीक है। पोप लियो ने अपने प्रवचन में कहा, हम इस जगह पर शाम की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने सदियों से पेरिस के लोगों को किसी और जगह से बढ़कर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, आग लगने के समय हमने भी बेचैनी से देखा, इस बात का एहसास किया कि इंसान अनहोनी के सामने कितने बेबस होते हैं। उस दुखद पल में हमें एहसास हुआ कि नोटरडेम एक स्मारक से कहीं बढ़कर है और यहाँ हम एक सभ्यता के जीते जागते केंद्र में खड़े हैं, जहाँ अतीत और भविष्य मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग और धरती एक साथ जुड़ते हैं। पोप ने अपना प्रवचन फ्रांस की कलीसिया को यह कहकर समाप्त किया कि वे ऐसी कलीसिया के जीते जागते पत्थर बने जो भविष्य की उम्मीद करता हो और उससे नहीं डरता हो। उन्होंने कहा, इस महागिरजाघर का पुनर्जन्म हुआ है ताकि आप भी इसके साथ पौत्रता और रोज के मिशन की ओर एक नई तेजी के साथ फिर से जन्म ले सकें। उन्होंने वहां उपस्थित विश्वासियों को संबोधित कर कहा, ईश्वर का प्यार सभी तक पहुंचाएं, एक ऐसा प्यार जिसमें जीवन और दिल बदलने और गहरे से गहरे जख्मों को भरने की ताकत हो, रात के अंधेरे से रोशनी लाने की ताकत। आइए हम अपनी नजरें कुंवारी मरियम और बालक येसु की 14वीं सदी की प्रतिमा की ओर उठाएं, जिससे आग ने छुआ तक नहीं था और अब यह एक बार फिर हमारे सामने चमक रही है।
1: Dans la nuit, la lumière apparaît encore plus éclatante.
0: फ्रांस में पोप लियो 14वें का पहला दिन एक जागरण प्रार्थना सभा के साथ समाप्त हुआ जिसमें करीब 80,000 युवा शामिल हुए। पोप ने उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें बिना किसी डर के मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा दिन संत पापा लियो 14वें ने सामाजिक सहायता और एकीकरण के मेसन बखीता केंद्र के दौरे से शुरुआत की। केंद्र के मुख्य द्वार पर संत पापा लियो का स्वागत पेरिस के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष लोरेट उल्रिक, केंद्र की निदेशिका और मीटिंग के सह नियोजक ने किया। केंद्र के अंदर संत पापा ने एक यादगार पट्टिका का अनावरण किया। केंद्र की निदेशिका के स्वागत भाषण के बाद केंद्र के 3 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं पेरिस में आपके साथ इस दूसरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। यह घर पूरे घर के लिए इस बात का गवाह है कि एक दूसरे से मिलना और सम्मान व शांति के साथ मिलजुल कर रहना संभव है। संत पापा ने कहा कि संत बकीता से जुड़ा यह सामाजिक सहायता और एकीकरण का केंद्र हमें प्यार की सभ्यता बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह सभ्यता उस संस्कृति का विकल्प है जो समुदायों को तोड़ती है और शहरों को अकेलेपन की बीमारी में धकेल देती है। संत बकीता हमें उन लोगों को देखने के लिए बुलाती हैं जो दरकिनार कर दिए गए हैं, उन्हें आज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की गुलामी से आजाद करने के लिए कहती हैं और हर उस भाई बहन की अपार गरिमा का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं जिनमें खुद येसु हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। संत पापा ने कहा, ख्रिस्तियों के लिए गरीब लोग सिर्फ समाज की कोई श्रेणी नहीं है बल्कि वे खुद मसीह का शरीर हैं। ईश्वर के मानव रूप में आने की शिक्षा को बस आम तौर पर मान लेना काफी नहीं है। इस महान रहस्य को सच में समझने के लिए हमें यह साफ तौर से जानना होगा कि प्रभु ने ऐसा शरीर धारण किया जो भूख और प्यास महसूस करता है और जो कमजोरी और कैद का अनुभव करता है। गरीब और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह इन स्त्री पुरुषों के जरिए हमसे मिलने और प्रेम पाने का मौका देते रहते हैं। ये लोग हमें खुद से ऊपर उठकर दान पुण्य करने का साहस दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उपहारों के आदान प्रदान से जुड़ी है जो हर मुलाकात में नए सिरे से होता है। कोई भी इतना गरीब नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो और कोई भी इतना अमीर नहीं है कि उसे कुछ पाने की जरूरत ना हो। हर व्यक्ति की सीमाएं दूसरों की रहस्यमयी उपस्थिति के लिए एक द्वार बन जाती हैं जिनमें जीवन के ईश्वर करीब आते हैं और वहां जीवन भरपूर होता है। संत पापा ने कहा कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आंख हाथ से यह नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और न ही सिर पैर से यह कह सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के जो अंग कमजोर लगते हैं वे भी बहुत जरूरी हैं। जब संत पौलुस ने प्राचीन रोमन दुनिया के इस अमीर और सांस्कृतिक रूप से विविध शहरों में से एक में रहने वाले ख्रिस्तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया है कि कम महत्वपूर्ण सदस्य को अधिक सम्मान मिले ताकि शरीर के भीतर कोई फूट न पड़े बल्कि सदस्य एक दूसरे का समान रूप से ध्यान रखें। अंत में संत पापा लियो 14वें ने मेसन बकीता और उन सभी ख्रिस्तियों को धन्यवाद दिया जो पूरे फ्रांस में इसी तरह की सेवा कार्य में संलग्न है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की देखभाल करने की उस भावना को बनाए रखें जो भाईचारे के साथ स्वागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बातचीत के जरिए लोगों की भावना को ऊंचा उठाती है और दुनिया को और अधिक मानवीय बनाती है। मेसन बकीता केंद्र का दौरा करने के बाद संत पापा लियो कार से इंस्टीट्यूट कैथलिक दी पेरिस के लिए रवाना हुए।
3: संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के कलिसियाई सभा के पुरोहितों, समर्पित जीवन के लोगों, दीक्षार्थियों और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से भेंट की। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में हम अपने भाई बहनों तक पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र आत्मा है जो आपकी कलिसियाई समुदाय को प्रेरित करते हैं और विस्तृत रूप में कहा जाए तो फ्रांस के कलिस्य के जीवन को ईश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमें किस ओर अग्रसर करते हैं जहां हम दीक्षार्थियों का साथ दे सकें, वे जो नए बपतिस्मा प्राप्त हैं, जो नई शुरुआत करते हैं। संत पापा ने कुछ सालों पहले एक फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की याद कराते हुए और उसे अपने में सम्माहित करने का आह्वान करते हुए कहा कि कलिसिया दीक्षा की एक अवस्था है, वह जो दीक्षार्थियों को मदद करती है, नए बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास में लौटने वालों का, वह उन्हें समय प्रदान करती, उन्हें ठोस तथा निरंतर दिशा निर्देशित करती है। वास्तव में ख्रिस्तीय दीक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अपने में पूर्ण रूपेण एक प्रेरितिक प्रयास का केंद्र रहा है। उस समय भी कई प्रस्ताव आए थे और उन सालों में हुए ईश शास्त्रीय और पूजन विधि से जुड़े विकास ने द्वितीय वैटिकन धर्म सभा के दीक्षांत के कार्यक्रमों को नया रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि आज परिस्थितियां अलग हैं, फिर भी आप दीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने की इस गहरी प्रेरिताई संबंधी परंपरा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो तरीका पहले से चल रहा था उसे 1996 में और मजबूत किया गया। संत पापा लियो ने कहा कि दीक्षांत की प्रक्रिया में होने का अर्थ उन लोगों का स्वागत करने से है जो ईश्वर की खोज करते हैं। उनमें दोनों एक अवसर और एक प्रेरिताई की खोज करना है। अवसर हमारे लिए उन बातों में निहित है कि विश्वासियों के रूप में हम अपने विश्वास की यात्रा को नवीन बनाते और सुसमाचार की खुशी को नए रूप में अनुभव करते हैं। वहीं प्रेरिताई हमारे लिए उन्हें पोषित करने और उनके दिशा निर्देशन में निहित है। यद्यपि उन्होंने संस्कारों को ग्रहण कर लिया है, हमें आनंद में उनका स्वागत करने की जरूरत है जो हमारे पास आते हैं। उनके आध्यात्मिक अनुभव का विकास करने, उनके व्यक्तिगत इतिहास का सम्मान और ईश्वर के संदेश को घोषित करने हेतु बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कई लोग बाद में वही सवाल पूछेंगे जो हमने मैरियल के साक्ष्य में सुना, बपतिस्मा के बाद खालीपन की अनुभूति से कैसे बचा जा सकता है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः हमें चाहिए कि हम उन लोगों को पूरी तरह अपने समुदाय में और बपतिस्मा के उपरांत प्रार्थना में मिलन में शामिल करते हुए उनके लिए स्वागत और प्रशिक्षण का एक अवसर दें जो उन्हें ख्रिस्तीय जीवन और विश्वास के विभिन्न पहलुओं को पूर्ण रूपेण आलिंगन करने में मदद करता हो। नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में उन्हें चाहिए कि वे ख्रिस्तीय विश्वास की नींव को गहराई से समझते हों, धर्म ग्रंथ और ईश शास्त्रीय बातों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए विश्वास के घोषणा के अनुरूप धर्म सिद्धांतों की समृद्धि और ख्रिस्तीय नैतिक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को और अधिक पूरी तरह से समझते हों। हमें चाहिए कि हम उन्हें कलिसियाई धर्म विधि के जीवन से परिचय कराएं। जैसे कि हमने साक्ष्य में सुना, संत पापा ने कहा कि कुछ एक के लिए धर्म विधि का अनुष्ठान विश्वास के रहस्य में प्रवेश करने का आधार बनता है। यह कलिसियाई जीवन का एक मूलभूत तथ्य है जो हमसे प्रेरितिक सेवा की मांग करती है, जो वैटिकन द्वितीय धर्म सभा की शिक्षाओं में आधारित है। वास्तव में धर्म विधि के बारे में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह धर्म शिक्षा के बाद आती है, जो कोई उन बातों को लागू करता है जिसे उसने सीखा है। इसके विपरीत यह मसीह के पास का रहस्य को अभिव्यक्त करती है जो हमारे लिए सुसमाचार और ईश्वर के जीवन को व्यक्त करता है। इसके सुर ताल में, भाषा और अनुष्ठान में धर्म विधि परिवर्तन की यात्रा बनती और संस्कारों के लिए हमें तैयार करती है।
1: Pour mener à bien cette mission, le rôle des formateurs est essentiel. Comme nous l'enseigne l'antique tradition de l'Église, il s'agit de préparer des parrains et des marraines des communautés.
3: प्रेरिताई के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन कलिसिया में हम इसे धर्म माता पिता के रूप में प्रस्तुत पाते हैं जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी ओर से एक विशेष तैयारी करें जिससे वे नए दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों की अच्छी अगुवाई कर सकें। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने ख्रिस्तीय वयस्क दीक्षांत रीति की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही प्रेरितिक कार्य में संलग्न लोगों को चाहिए कि वे सिर्फ धर्म ग्रंथ, ईश शास्त्र, धर्म विधि और आध्यात्मिक जीवन तक ही प्रशिक्षण प्राप्त न करें, लेकिन मानवीय गुणों में भी, जिससे वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन लोगों की मदद कर सकें। संत पापा ने कहा कि जैसे हमने सुना, कुछ लोग साधारण आध्यात्मिक प्यास के साथ आते हैं जीवन के अर्थ की खोज में, सुसमाचार के आकर्षण में। वहीं दूसरे हैं जो दर्द भरे अनुभवों, अकेलेपन और बड़ी कठिनाइयों से दबे आते हैं। ऐसी स्थिति में निकटता, करुणा और कोमलता हमारे लिए अर्थपूर्ण होते हैं। हमें चाहिए कि हम एक संतुलन की स्थिति में उन्हें सुने, उनका स्वागत करें। इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम उन्हें विश्वास की चुनौतियों का सामना करने में प्रोत्साहन दें। इस यात्रा में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गति का धीरे से और सावधानी पूर्वक भ्रातृत्व में, सहचर्य में सम्मान करें। यह हमें एक साथ चलने की शैली को अपनाने का आह्वान करती है। अपने ख्रिस्तीय विश्वास के मार्ग में हम एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। हम पुरोहितों और लोक धर्मियों, दादा दादियों और दीक्षार्थियों, प्रेरिताई के अगुओं और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में मिलकर विकास करते हैं। संत पापा लियो ने संत अगुस्टिन की याद दिलाते हुए कहा कि वे संत अम्ब्रोस के द्वारा विश्वास से परिचित हुए। उनका विश्वास एक छोटे बीज की भांति था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। यद्यपि वह बीज बढ़ा और विकसित होकर एक बड़ा वृक्ष बना, जिसकी शाखाओं में हम आज भी अपने लिए पनाह को पाते हैं। आप सभी नए बपतिस्मा प्राप्तों को देखते हुए, मैं आप सबों को सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि आप फ्रांस के कलीसिया के लिए पूर्णतः की प्रतिज्ञा स्वरूप हैं। इसके बदले में आप इस समाज के लिए सुसमाचार के प्रेरित बने। इस महान भूमि का साक्ष्य आपकी यात्रा को पोषित करे। एक दूसरे का स्वागत करते हुए हम सब मिलकर फ्रांस में कलीसिया के जीवंत समुदाय का निर्माण करें, जो आस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने फ्रांस के मुख्य संरक्षिका कुमारी मरियम की ममता में सुरक्षा और शहर के रक्षक संत जेनेविव और संत डेनिस की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए संत पापा ने सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
4: Amen. Amen.